अमरीकी फ़ौज जा तेहरान सूधो ईरान के केतरनि ई शहरनि ते हमला। पासदारनि इनकलाब जी नेवी ठिकाणनि कमांड सेंटर जे ड्रोन गोदाम ऐं मवासिलाती नेटवर्क्स खे निशान बणाइण जी दावा। खोजिस्तान जे शहर एवाज़ में अमरीकी मिज़ाइल हमले में 4 ॼणा शहीद, 5 ज़ख़्मी। ईरानी फ़ौज पारां जवाबी कार्रवाई में बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत में ॿारनि जे ज़ख़ीरनि, फ़ौजी राजगान ऐं अमरीकी जहाज़नि जे हैंगर खे निशान बणाइण जी दावा। इराक जे अरबी हवाई अॾे ते बि ईरानी ड्रोन हमिलो। पासदारनि इनकलाब अमरीका खे अॾा ॾियण ते बरतानिया खे वार्निंग ॾींदे चयो त ईरान ख़िलाफ़ इस्तेमालु थींदड़ हर फ़ौजी अॾो ईरान जो दफ़ हूंदो। ॿिए पासे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी ईरान खे वॾी फ़ौजी ऑपरेशन जी धमकी। आबनई हरमोस में तजारती जहाज़नि ते हमले में ईरान जे ज़ब्त थियल असासनि मां नुक़सान भरण जो ऐलान। ईरानी परॾेही वज़ीर असासनि खे अदायगी लाइ ज़ब्त करणु ख़तरनाक ऐं चिड़ ॾियारींदड़ करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्लामाबाद में स्काए 47 डेटा सेंटर कराकरम 1 जो इफ़्तिताह करे छॾियो। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग ऐं डिजिटल ख़िदमतुनि लाइ मज़बूत बुनियादु मुहैया कंदो। तकरीब के ख़िताब में वज़ीर आज़म चयो त स्काए 47 मनसूबे खे मज़बूत सिक्योरिटी मुहैया कंदो। ॾुखियाईनि ऐं चैलेंजिस जो हिमत सां मुक़ाबिलो करियूं त हक़ जे मार्केट जहिड़ा तारीख़ी कारनामा जनम वठंदा आहिनि। फील्ड मार्शल जे दूरस क़यादत खे भेटा पेश करियूं था। स्काए 47 जहिड़ा मनसूबा पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहिनि। असां मुतद कमु करियूं त को बि मक़सदु हासिलु करणु ॾुखियो न आहे। कश्मीर खे कश्मीर ऐं मीरपुर खे मीरपुर ख़ासि न सम्झो। बिलावल बरखुरदार, मुंहिंजी ॻाल्हि खे ख़राब न सम्झो। सियासत में जुमिलनि जी ॾे वठि थींदी रहंदी आहे। सियासी पार्टियुनि में लड़ाई ऐं मारकुट न पर तनक़ीद थियणु घुरिजे। नवाज़ लीग जे सदर जो आज़ादु कश्मीर जे इलाइक़े मीरपुर में चूंड जलसे खे ख़िताबु। नवाज़ शरीफ़ चयो त मरी खां मुज़फ़्फ़राबाद ताईं एक्सप्रेस वे ठाहियो वेंदो। मरियम नवाज़ मीरपुर में 10 मोबाइल इस्पतालूं आणे रही आहे। शहबाज़ शरीफ़ खे चवंदुसि त मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आहे। जेके इलेक्ट्रिक बसूं लाहौर में हली रहियूं आहिनि, मरियम नवाज़ उहे बसूं कश्मीर आणे रही आहे। पंजाब जी वज़ीर आला जा जलसे खे ख़िताब में पीपल्स पार्टी ते तनक़ीदी वार। मरियम नवाज़ चयो त मुखालफ़नि जूं जंगूं ॾकी रहियूं आहिनि। मुखालफ़नि जूं डोड़ूं ॿुधाए रहियूं आहिनि त नवाज़ लीग आज़ादु कश्मीर जी आवाम जी हिमायत सां खटे वई आहे। बिलावल भुट्टो जो नालो खण बिना मरियम नवाज़ चयो त मुखालफ़ चई रहियो हो त असांजी आज़ादु कश्मीर में हुकूमत हुई त छा कयो। आज़ादु कश्मीर में थोरे अरसे लाइ हुकूमत हुई, उन बावजूदु एतिरा मनसूबा आंदा 5 सालनि में कश्मीर पंजाब खां बि अॻिते वञी सघे थो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कश्मीर जो फ़ैसिलो रुॻो कश्मीरी कंदा। इस्लामाबाद, पंजाब ऐं सिंध कश्मीर जो फ़ैसिलो नथा करे सघनि। कश्मीरी बिरादरी जे हक़नि लाइ चूंडुनि में पीपुल्स पार्टी खे कामयाबु करियो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: Why not wind up the two of the best?

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad maya.
3: इराकी वज़ीर आज़म वाशिंगटन के दौरे का पोए तेहरान पतो आई ईरानी क़यादत से मुलाकातू क्यों रिपोर्ट मूजिब अमरीका पारा जंगबंदी की आछ जहा मुकम्मल तफसील सामूँ अची सकिया अमरीकी फौज जहा तेहरान सूदो ईरान के केतर ही शहर से हमला पासदारन इनकलाब की नेवी ठिकाणन कमांड सेंटर्स ड्रोन गोदाम ए मवासिलाती नेटवर्क्स के निशान उभारण की दावा खोजिस्तान के शहर एवाज में अमरीकी मिजाइल हमले में चार जना शहीद पंज जख्मी ईरानी फौज पारा जवाबी कार्रवाई में बहरेन उर्दन ए कोवैत में बारन के जखीरन फौजी राजगान ए अमरीकी जहाजन के हैंगर के निशान उभारण की दावा इराक के अरबी लवाई अड्डे से भी ईरानी ड्रोन हमलो पासदारन इनकलाब अमरीका के अड्डा दियण से बरतानिया के वार्निंग डींदे ईरान खिलाफ इस्तेमाल थींदड़ हर फौजी अड्डो ईरान जो दफ हूँ बे पासे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी ईरान के वड़ी फौजी ऑपरेशन की धमकी आबनई हरमोस में तजारती जहाजन के हमले में ईरान के जब्त थियल असासन में नुकसान भरण जो ऐलान ईरानी परदे वजीर असासन के अदायगी लाए जब्त कर खतरनाक है चिड़ डींदड़ करार दई छ वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर कराकरम वन जो इफ्तिताह करे छो डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा होस्टिंग ए डिजिटल खिदमत लाए मजबूत बुनियाद मुहैया कंदो तकरीब के खिताब में वजीर आजम चो स्काई 47 मनसूबे के मजबूत सिक्योरिटी मुहैया कंदो दुखियान ए चैलेंजेस जो हिम्मत से मुकाबलो करूं त हक के मार्के जड़ा तारीखी कारनामा जन्म वठंदा फील्ड मार्शल के दूररस क़यादत के भेटा पेश करूं था स्काई 47 जड़ा मनसूबा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत आन असा मुतद कम करूं तो को भी मकसद हासिल करण दुख्य ना है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सुबह

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Viram, Fari Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab karein.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

मुआहदे जो हिस्सो न बढ़जंदो त एक्वी मुआहदो न कंदासीं। ट्रंप जे चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। अमेरिका पारां ओमान में बहरी नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कंदड़ जहाज खे नाकारा बणाइण जी दावा। अमेरिकी फौज जो चवण आहे त जहाज चार भेरा नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कई, वधीक 12 जहाजनि जो रुख बि मोड़ियो वियो। अमेरिका अपना हर्मुज़ में ईरानी टैंकर खे तबाह करे छॾियो, 2 ॼणा मारिजी विया। सऊदी इतिहादी फौज पारां यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह ते हमले जी तस्दीक। सऊदी इतिहादी फौज चयो आहे त यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणनि स्ट्रिट जे हंधनि खे निशानो बणायो। अल हुदीदा बंदरगाह खे निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाज़नि जे अचवञ लाइ खुलियल आहिनि।

0: शहरपुर जिला अदालत में प्रिया समेत बेन मुगवी बारन की बाजियाबी लाए लगल धरने थे तशद्दुद गिरफ्तार इन खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधड़ी सोनी पारस लख जलवाणी बेन की आजादी बाद वकील दरख्वास्त वापस वी छी अदालत दरख्वास्त वापस वे उकलए छी सोनी पारस लख जलवाणी बेन के पुलिस रात देर से आजाद कर हो। भान सईदाबाद में ट्रक ड्राइवरन जो मोटरवे पुलिस के ज्यादतन खिलाफ इंडस हाईवे ते धरनो ट्रक ड्राइवरन गाड़ियों बीहारे मोटरवे पुलिस खिलाफ नारेबाजी कई इंडस हाईवे ते धरने सबब बिन्ही पासन का केतर ही गाड़ियों बीह वही मोटरवे पुलिस जो ज्यादतियों बंद करण जो मुतालबो। थानो बोला खान वेझो अस्पताल वींदड़न की गाड़ी हादसे जो शिकार बिन औरतन समेत टे जणा फोत टे जख्मी थानो आरिफ खान रोड ते मोड़ काटींदे कार कलटी थी पई औरत ताजल नाजा ताजो जावल बार फोत थी वया टे जणा जख्मी मुतासरन मूजिब अस्पताल वञण दौरान गाड़ी सा हादसो पेश आयो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में किथे हल्की त किथे तेज बरसात कराची मिट्टी ए छोर में ककर वसी पया कराची के मुख्तलिफ इलाकन में हल्की बरसात बाद मौसम खुशगवार थी वयो मिट्टी ए छोर में भी हल्की बरसात मौसम खुशगवार थी वही सूबे के मुख्तलिफ शहर ते कारन ककरन जो राज। एक वण सिंध अमर के नाव केटीएन न्यूज ए कावस के वण पोखण वे सड के भरपूर मोट सिंध के मौसमियाती तब्दीली के असर का बचाण लाए वण लगाण वे सड ते सिंध वासिन वण लगाण शुरू कर छड़ा केटीएन न्यूज ए कावस पारा 31 जुलाई 2026 तई वण पोखण जो सर डल है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
2: इहा वाकई फायदे वारी है छा
3: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए
3: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है
2: इस्तेमाल किए कजे
3: मुतासिर थेल हंद ते डी में बे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करे हो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: GAFM 88
4: नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिज के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ਨਾ ਸਦਾ ਟੌਪ ਤੇ
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News. Aap sun rahe the GAFM.
4: टे जवाबदार गिरफ्तार किया है जख्मी खादिम बसन शाहिद आदिल अली रजा बसन के अस्पताल मुंतकिल किया वो थानो बुलाकान भरसा कार गलती थे सबब औरतू फोत टे जणा जख्मी थानो आरिफ खान लिंक रोड से तेज रफ्तारी सबब कार गलती थी पई ताजुल जाल रसूल बख्श नाजा जाल जुम्मन फोत थी व्यू सुल्तान जाल बिश्मा ऐं ड्राइवर वीर ब्रह्माणी जख़्मी वारसनि मूजिबि नाज़ा ज़ाल जुम्मन खे डिलीवरी लाइ अस्पताल खणी वञी रहिया हुआसीं त हादसो पेश आयो

ऐं खिपरो भरिसां फुरमज़ा ते क़तल थियल नौजवान भेरू कोहली जे केस में टे जवाबदार हाफराए पुलिस जवाबदार तलब तालिब मरी आरिफ़ मरी ऐं हयात मरी खे ज़ख़्मी हालत में सिविल अस्पताल सांघर खणायाई। टिन्ही जवाबदारनि खे जंगुनि में गोलियूं लॻल आहिनि। टे ॾींहं अॻु फुरमज़ामत ते नौजवान भेरू कोहली खे फुरमज़ामत ते क़तल कयो वियो हो। केस दाख़िल न थियण ख़िलाफ़ वारसनि लाश रखे ॿिनि ॾींहनि ताईं धरणो हयो हो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलणु फिरणु बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सुबह की

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनो दिल के तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। दो के समंदर चाहतों की बारिश पासवर्ड खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक से शाम तक दिन से रात नीचे जाकर कमी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तातक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन जिंदगी के आखिरी दिन अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप लोगों की खूबसूरती की जमानत है जनाब। अगर आप भी हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती आपको मिल सकती है बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन ब्यूटीफुल और पुरकशिश भी बन सकते हैं। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान। नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे। आप लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल है इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो वो सारे लोग व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो उनका इस्तेमाल करें और आपको आपकी खोई हुई खूबसूरती मिलती रहे। ओके जी तो यहाँ पर जनाब जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर अंत के हालत कैसे है आपकी हालत है उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां वो खत्म हो चुकी और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे। इन 2 घंटों में आप सोच लीजिए हम कितनी ज्यादा वाली बातें करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी ना सिर्फ बातें करेंगे बल्कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाएंगे। आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बिल्कुल वैसे ही व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनके बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर की जाएंगी और साथ ही साथ आप कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं ये चीजें भी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल जी रेडी हो जाइए और यहाँ पर आप लोगों की जो है ना हाँ जी आप लोगों के लिए ऐसे कर लेते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले जो ना अगर से प्रोग्राम कर लेते हैं और अगर से प्रोग्राम करेंगे आज एक बहुत ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है। तो मैं चाहती हूँ कि जरा हम पहले कसीदा सुन लेते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जनाब, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही तो तैयार किए गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से परचेज करेंगे, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ कैसे होगा, तो आप लोगों को बताऊंगी ना। सब्र तो करिए, रुकें तो जरा, इतनी भी जल्दी किस बात की है आखिर। यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हो, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऐसा जो है अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो तरीकेकार बताएंगे। लेकिन साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज आप लोगों से प्रोग्राम के अंदर सवाल क्या पूछा जा रहा है वो सबसे पहले बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का सवाल मैंने आप लोगों से ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग ज्यादा खाते हैं, यानी कि किस शहर में सबसे ज्यादा पिज्जा खाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, और पेज को सर्च करने के बाद आप जब पेज पर आ जाएं तो आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है जो कि लाइव होती है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो के, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताइए, और साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं। हाँ जी, इसी के साथ साथ जो है अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप बेधड़क रابطہ करती रहें, आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप फलां जगह से हैं तो आप फलां जगह से जाकर जो है ना व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज करके, या तो जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नंबर्स बताए जाएं तो नंबर जरा

नोट करते जाइएगा. नंबर है एक पहला नंबर 03-12-50-205-907 और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09. ये नंबर से आपकी आसानी के लिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो आसानी से करवा सकते हैं. उन्हें बताइए कि आप लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होने चाहिए. चाहे आप किसी भी जो इना सिटी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी गोट से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए. ऐसे के साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. जैसे कि आपको व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है, नाइट क्रीम, व्हाइट एज लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, उसके अलावा व्हाइट एज का ब्यूटी सोप है, व्हाइट एज का फेस वॉश है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और साथ में डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है. अब इनकी क्या तरीकेकार होंगे लगाने के, वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी. लेकिन यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी अनवर अली. यदि अस्सलाम वालेकुम, हाय सिद्रा, कैसी हो? अदी, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आपको भी वेलकम कहा जाता है. आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं. और कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा. ओके, मैं कोशिश करती हूँ, लगाएंगे आपका गाना. अनवर कहते हैं पोएट्री, अपने दिल में नफरत मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उसके दिल में अल्लाह पाक नहीं बसता. ओके. और चाचा खालिद जुड़े जो हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं हाउ इज योर मूड एंड दिल का मौसम सिद्धो बेटा, होप वेल. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर, आप बताएं कैसे. और हैं जी आबिद परदेसी भाई हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है. इखलाक बलोच हमारे साथ, नाइस यू, थैंक यू इखलाक भाई. अनवर भाई कहते हैं सिद्रा आज आपका मूड ठीक है. जी जी. और मोहम्मद अली खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप अच्छा, यानी कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है. थैंक यू जी, थैंक यू. और अब्दुल गफूर कैसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है. जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए. चाचा खालिद आपने गाने की फरमाइश करिए, मैं लगाने की कोशिश करूंगी. और रमजान अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, इन मौला अलैहिस्सलाम मदद कहा जाता है प्यारे भाई को. और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही, साजिद हुसैन सुमरो वालेकुम अस्सलाम, मौला अलैहिस्सलाम मदद, आप हमें सुन रहे हैं मिठू देरो से, आपको भी वेलकम कहा जाता है. और हैं जी अब्बास अली नोहरियो, अब्बास अली कहते हैं शहबाज जान नोहरियो डिस्ट्रिक्ट थर्ड पार्कर से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, वेलकम कहा जाता है. अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. अशोक कुमार हमारे साथ ही, हाय सिद्रा कैसी हो? आई एम अशोक कुमार. ओके जी, फ्रॉम दिल्ली इंडिया से अशोक कुमार हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और हैं जी गुलाम फरीद बलोच हमारे, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जनाब? आपका प्रोग्राम वेरी ब्यूटीफुल है, सॉन्ग सुना दीजिएगा. बिल्कुल जी, आपको ब्यूटीफुल सा गाना सुना देंगे. मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम स्वीट कोयल, सदाबहार सिद्रा, अबुआ जी, हाँ जी बोले, कैसे ही ठीक ठाक. रमजान अली कहते हैं मेरा महबूब इतना नादान है कि पूछो मत, मोहब्बत का दावा हमसे करके साथ किसी और का निभा रहा है. वाह साईं वाह, ये तो गद्दारी हो गई. अच्छा, मीरपुर खास अब्दुल्ला बहर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, शो आपका वेरी नाइस है, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है. और हमारे साथ हैं यहाँ पर, हाय सिद्रा प्लीज प्ले सॉन्ग. हाय सिद्रा तो लिख दिया, अपना नाम भी लिख लेते तो कितना ना अच्छा होता. नाम लिखा करिए अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं पैनल पर, खास करके मैसेज करते हैं. मोहम्मद अली खोसो कहते हैं हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, जबरदस्त सिद्रा, आपकी सारी टीम को सलाम. जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद एंड बखैर अगले. और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, जुड़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते रहिए. मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है, तो जरा उसका जवाब बताइए ना. तो सवाल ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं. हाँ जी बताइए मुझे जल्दी से, और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए.

0: लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या आप आसाबी दर्द?
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
0: कमर?
1: हाँ,
0: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
0: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तव्हांजी पाड़ ई पटिजी वेंदड़ सो एक्नी अगरि तव्हां ख़तमु करणु चाहियो था दाणा तव्हां ख़तमु करणु चाहियो था त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसजो उन खां अलावा असां मूव कयूं था बाबा अगरि तव्हां वाइट एज जो साबुण इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां वटि वाइट एज जो ब्यूटी सोप मौजूदु आहे ऐं वाइट एज जो ब्यूटी सोप जेको आहे उहो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो सफ़ा डिटो कॉपी आहे सेम टू सेम आहिनि यानी कि अगरि जहिड़े तरीक़े सां वाइट एज ब्यूटी क्रीम खे तयारु कयो वियो आहे तीअं ई वाइट एज जो ब्यूटी सोप बि तयारु कयो वियो आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि एवोकाडो आहे वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदरि बि एवोकाडो आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि एलोवेरा आहे त वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदरि बि एलोवेरा आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि मिल्क आहे त वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदरि बि मिल्क आहे ही सफ़ा मतिलबु हिक ई सेम तरह सां तयारु थियल आहिनि तव्हांखे रिज़ल्ट बि सफ़ा वी आई पी ॾियण वारा आहिनि त जेके माण्हू साबुण इस्तेमालु कंदा आहिनि त हू वाइट एज जो ब्यूटी सोप लॻाए सघो था तव्हांजी स्किन फ्रेश थी वेंदी तव्हांजी स्किन हेल्दी रहंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते ग्लो ई ग्लो हूंदो उन खां अलावा अगरि तव्हां चओ था त बाबा असां साबुण आहियूं त ॻाल्हि सिधी आहे असां फेस वॉश हणंदा आहियूं त बाबा टेंशन छो था कयो तव्हांजे लाइ वाइट एज जो फेस वॉश बि मौजूदु आहे ऐं वाइट एज जो जेको फेस वॉश आहे बाबा ही थोरो मुख़्तलिफ़ आहे छो त वाइट एज जे फेस वॉश खे जेको आहे न वाइटमिन सी सां तयारु कयो वियो आहे हिन जे अंदरि वाइटमिन सी आहे ऐं वाइटमिन सी सां गॾोगॾु वाइटमिन ई बि अथसि ऐं उन खां अलावा जेको आहे न वाइट एज जो जेको ही फेस वॉश आहे इहो तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी स्किन जेका ब्राइट थी वेंदी एंटी एजिंग जे लाइ आहे ऐं तव्हांखे सफ़ा ईअं क्रीमी फेस वॉश मिली वेंदो तव्हां चाहींदा बाबा वाह वाह अहिड़ा फेस वॉश त ईंदा रहनि मुल्क तरक़ी कंदो रहे त बिल्कुलु अची विया आहिनि वाइट एज जो फेस वॉश तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो उन खां अलावा जेको आहे सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम आहे ऐं वाइट एज ब्यूटी क्रीम हिकु नाइट क्रीम आहे सो जेकी नाइट क्रीम हणण वारा शौक़ीन माण्हू हूंदा आहिनि त उहो वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघनि था वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इहो फ़ाइदो आहे त तव्हांजी स्किन जेका आहे फ्रेश रहंदी ग्लोइंग रहंदी ऐं तव्हांजी स्किन प्रोटेक्ट रहंदी उन्हनि तमामु चीज़ुनि खां जेके चीज़ूं तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाईंदियूं आहिनि यानी कि तव्हांजी स्किन अगरि ख़राब बि थी वई आहे त तव्हां टेंशन न वठो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो जीअं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो बेदाग तव्हांजी स्किन थी वञे ऐं तव्हां सफ़ा ग्लो कंदा वधो ऐं उन खां अलावा लास्ट में असां वटि बचो आहे बाबा असांजो फेवरेट प्रोडक्ट जो नालो आहे अज़ीमो शान शहनशाह वाइट एज लवली क्रीम हाँ यकीन जाने वाइट एज लवली क्रीम मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी भाई हर एक इंसान को नीड होती है हर एक इंसान की जरूरत वाला प्रोडक्ट है अगर आप भी वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले सुन लेंगे वाइट एज लवली क्रीम के जो फायदे हो कितने ज्यादा और वाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम तो इसे आप दिन में इस्तेमाल करेंगे रात में लगाएंगे जब आपका दिल करे तब लगाए क्योंकि फेयरनेस क्रीम जो होती है वो ऐसे बस चुटकियों में आपको रेडी कर देती है अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि वाइट एज लवली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपकी स्किन के मुताबिक तैयार की गई है तो बिल्कुल जी वाइट एज लवली क्रीम जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है जिसके अंदर 30 विटामिन्स कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं और उसके साथ साथ आप लोगों की स्किन का ख्याल रखते हुए इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है यानी कि ऐसा नहीं कि बस आप लोगों को सिर्फ खूबसूरती मिलेगी बल्कि ऐसा है कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी तो अगर आप भी वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिए कोई भी एज लिमिट नहीं है यानी कि आप बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं मर्द हैं ख्वातीन हैं हर कोई वाइट एज लवली क्रीम को इस्तेमाल कर सकता है अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कोई भी आप काम करते हैं और आपको जल्दी में सुबह सुबह रेडी होकर जाना पड़ता है काम पर तो आप वाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर लीजिए आपकी स्किन ग्लो भी करती रहेगी आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहेगी सूरज के इन खतरनाक रात के साथ तो बिल्कुल अगर आप भी वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी बन जाएं खूबसूरत और खूबसूरती आपको मिले वो वाली जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-12-50-25-907 या वरी तुम डायल कंदा 03-27-38-4309 ओके जी सो जल्दी जल्दी से ये नंबर डायल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती आपको मिलती रहे और आप भी ये सोचे कि भाई जान अब हम भी हसीन हो सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए देर मत कीजिए और खूबसूरत हो जाइए इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए फेसबुक पर जितने लोग हमारे साथ पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से ज्वाइन किया है ये भी बताइए

हाँ जी भाई तोहबा है, इतना हुसन आपको मिल जाएगा कि लोग पूछेंगे आपसे, आप उन्हें बताइएगा कि ये कमाल वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। इसी के साथ साथ अशोक कुमार भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं यू वेलकम जी, आपका शो सो नाइस, थैंक यू वेरी मच अशोक कुमार भाई। अनवर कहते हैं सॉन्ग सुनाए असा हथा मथे क्या सी डाडोआ, लगाने की जी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं वासु भाई, वासु भाई कैसे हैं, ठीक ठाक। मोहम्मद जमान कहते हैं सुंदर कहा था, हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वो तो मैं हूँ। रिजवान अली हमारे साथ कहते हैं हाय बहन कैसी हैं आप, आपका शो वीआईपी है, रिजवान मरी मेहरापुर से हमारे साथ है, वेलकम जी, खुश आमदीद। मुस्कुराती हो

भी रिहाना हमारे साथ हैं, बखर से आप हमारा शो सुन रही है। रिहाना आपको भी वेलकम कहा जाता है। मोहम्मद अली खोसो भाई कहते हैं मेरा सलाम दीजिएगा अयूब भट्टी बाबल खोसो को। ओके जी, रिजवान अली बलोच हमारे साथ हैं, हाय। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहती है कि चंदा जानी आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है स्वीटी। कहती माय फेवरेट आजे चंदा, हां जी। इकबाल लाशरी हमारे साथ ही, बाजी सवाल जवाब आहे। इटली में तो सब खां वधीक पिज़्ज़ा ठयो वेंदो आहे, ऐं हा इहा ॻाल्हि बि आहे त जिते सभ खां वधीक पिज़्ज़ा ठहियो वञे थो उहो सिटी त खाई कोन थो, ऐं ॿियो हिकिड़ो सिटी आहे उहो खाए थो। इहो छा लॉजिक आहे, इहो तव्हां ॿुधाईंदा मूंखे? सभु कुझु मां कोन ॿुधाईंदसि न। अनवर तव्हां बि सवाल जो जवाब ॾिनो आहे, ओके जी। दर्दे दिल हमारे साथ और कहती है, ऐसा लगती है वक्त खामोश मगर कीमती, वक्त का गुजर जाना तो कुदरत का निजाम है मगर वक्त को जाया करना ये इंसान की अपनी नादानी है। लम्हे कीमती है मगर हम अक्सर उनकी कदर उस वक्त करते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुके होते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी। ऐसा ये वक्त की कदर आजकल कोई नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है, तो वक्त की कदर करनी चाहिए, सही बात है। और रमजान अली कहते हैं मतलब खत्म हुआ तो मुझे छोड़ गया वो शख्स, फकत ये कहकर अब हम आपके कुछ नहीं लगते। क्या बात है रिजवान भाई, रमजान भाई आपके बिल्कुल नीचे रिजवान अली बलोच भी मौजूद हैं जी, खुश आमदीद कहा जाता है। पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप इस वजह से नहीं कर पा रहे भाई आपके एरिया में नहीं अवेलेबल, आप लोगों के सिटीज में नहीं मिल रहे, तो उसके लिए आपको जो नंबर बता रही ना बस वो नंबर डायल कर लिया करिए। नंबर जैसे ही आप डायल करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी वाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप बस वहां से जाएंगे और परचेज करके आएंगे। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप जल्दी से जो है वो अवेलेबल कराइए, उसके बाद इस्तेमाल करते जाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस हम कह सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में इतने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप खूबसूरती तो बढ़ाएंगे लेकिन खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगे। तो खूबसूरती की हिफाजत कीजिए और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए।

ओके जी, चाचा खालिद कहते हैं दोनों में से, अच्छा आपने पूछा है कि आप कौन सी वाली लगाएं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की स्किन के मुताबिक। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की स्किन कैसी है, तो मैं आप लोगों को दोनों प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोग सिलेक्ट कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे चेहरे के ऊपर सूट कर सकता है, तो आप प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक आंसर, ऐसा नहीं है मोहम्मद जमान भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। सैयदा बुखारी हमारे साथ कहती है सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, मोहतरमा जनाब क्या हाल है आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, और यारब अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन मेरी जान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। कहती है कि वफा का दर्स लेना है तो फूल से ले, जो पौधे से जुदा होते ही मुरझा जाते हैं। सैयदा बुखारी राइटर, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। और कहती हैं आई मिस यू सो मच, वेलकम कहा जाता है प्यारी को।

ओके जी, इकबाल आशरी हमें मीरपुर खास सुन रहे हैं। भाई जान कहते हैं सवाल का जवाब है इटली में। ओके, आबिद ब्रोई हमें सुन रहे हैं। हेलो, गुलबहार जुड़े जो हमारे साथ कहते हाय सिद्रा, मैं हैप्पी गर्ल हूँ, मैं आपका शो सुन रही हूँ। मैंने कल आपसे बात की थी, मैं आपको दूसरे मोबाइल से मैसेज कर रही हूँ। अच्छा, यानी कि आपने कल दूसरी आईडी से मैसेज किया था। सही है जी, बहुत बढ़िया, वेलकम कहा जाता है आपको। और इखलाक भाई कहते हैं छोटो इटली जा मानू अमीर आयन खाइंदा गरीब आयन पिज्जा। अच्छा, वो बस बना के जो है ना वो छोड़ देते, खाते दूसरे लोग। वैसे ये चीज है कि जहाँ पे जो चीज ज्यादा बनती है तो वहाँ के जो लोग है ना वो उस चीज से उकता जाते हैं। ये चीज है, मान लिया।

ओके जी, वारी वारी जावा, लेकिन आप तो ये बताइए वाइटेश का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा साजिद हुसैन सुमरो कहते हैं शो आपका नाइस है, शमन का गाना लगाइएगा। बिल्कुल लगाते हैं। हैप्पी गर्ल कहती हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अच्छा समीरो चौहान हमारे साथ हैं थर पार्कर से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और आबिद रसूल आबादी की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई तवा की चौथा भली करी आया प्यारा भाव। कश्मोर से एक लाख भाई हमारे साथ ही, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि आप समझ गए होंगे कि आपका गलत जवाब है। अच्छा मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर कहती है सलाम अलैकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, हाँ ना इस्तेमाल करती रहिए। और गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए बाजी काल सिस्टम रखे सॉन्ग अल्लाह दिनो जुनेजो का सुनाइएगा, कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगाएंगे। अच्छा अच्छा खाली जुनेजो कहते हैं कि टॉपिक आंसर ओके ओके ओके, मैं लास्ट में आपको बताकर जाऊंगी कि किसका जवाब जो था वो असल सही था। और हमारे साथ ही चाचा खाले जुड़े जो आपने गाना लिखा लगाने की कोशिश करेंगे जी। और उसके अलावा आबिद रसूल आबादी सबनी दोस्तन के सलाम अदी किस्मत सा अर्ज कयो आ बरकत भट्टी जो गानो हलाए जो ओके भामा कोशिश क्या पसंद जो गानो तुम्हें बुधराइंदासी मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया।

मोहम्मद सलमान भाई पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं, मत करिए ऐसा भाई जान। और उसके अलावा जो है ना, मतलब आप अपनी बुआ जी को चिढ़ा रहे हैं। ओके सो ऐसा करते हैं, यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जनाब न्यूज ब्रेक का, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी होने वाली है, जल्दी वापसी आप लोगों के पास आएंगे, घबराइएगा नहीं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनती रहिए और शादी जी पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड ब्यूटी शो। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी हसीन हो जाए।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जिदाव अमेरिकी फौज जो चवणाए त जहाज चार भेरा नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कई, वधीक 12 जहाजन जो रुख भी मोड़ियो वयो। अमेरिका आपने हरमुज में ईरानी टैंकर के तबाह करे छड़ियो, 2 जणा मारजी वया। सऊदी इतिहादी फौज पारा यमन जे अलहदीदा बंदरगाह ते हमले जी तस्दीक। सऊदी इतिहादी फौज चयो आए त यमन जे अलहदीदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणन स्टेट जक हंधन के निशानो बणायो। अलहदीदा बंदरगाह के निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाजन जे अचवन लाइ खुलियल आहिनि। सिंध में बदमनी करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिनि। कराचीअ खे बि 18 सालनि दौरान तबाह कयो वियो आहे। हेठी सतह ताईं इख़्तियारनि जी मुंतकिली लाइ सभु आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सिंध में 2.6 करोड़ ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। मुगवी ॿारनि जी वाजिबु लाइ एहतजाज कंदड़ माइरनि ते बि डंडा वसाया विया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लॻायो वियो, जंहिं सबबि दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं। बलूचिस्तान जे मस्तोंग वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन अर्ज़न जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु मुख़्तलिफ़ कार्रवायुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया आहिनि। ऑपरेशन अर्ज़न दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु बि वधी 13 थी वियो आहे। हुकूमत लाॻीतो 5 ॾींहं बि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध करे छॾी। पेट्रोल 3.66 रुपया ऐं डीज़ल 4.80 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 335.18 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 383.46 रुपया फी लीटर थी वई। नवां अघ 24 कलाकनि लाइ लागू हूंदा। कराची में HIV जो गणती जोगो फैलाव। अस्पतालूं ॿारनि में HIV वायरस जे पखेड़ जो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
2: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
1: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
2: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़्ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जे नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे।
2: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध, जेकरे उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञा।
1: वाह, पोए अॼु ई वठींदस।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ हैं जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखर मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से. आपकी सिद्धर आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताएं ना, कहां से हमारे साथ मौजूद है, किस किस सिटी से हमें सुन रहे हैं, किस किस गांव से हमारे साथ है और इसके अलावा कहां कहां पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. जनाब सो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. प्रोग्राम का दूसरा घंटा आ चुका है. प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हमने कदम रख लिया और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है तो वो जरा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया है उनको भी पता हो. तो आज मैंने आप लोगों से पूछा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं, यानी कि कौन सा शहर है जहाँ पर पिज्जा जो है वो सबसे ज्यादा खाया जाता है. ओके सो जल्दी से मुझे बताइए और शामली प्रोग्राम होने के लिए 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे. ओके जी, तो यहाँ पर हम जब दूसरे घंटे में आ चुके हैं तो आपको पता है कि दूसरे घंटे में दाखिल होते ही आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपको बताएंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश के बारे में बताएंगे. दिल वॾी कयो बाबा, दिल नंढी न कयो. तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाए छॾी नासी त तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त तव्हांजी ख़ूबसूरती केतिरी वधी सघे थी. ऐं उन खां अलावा कुझु माण्हू वाक़ई अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे न इहा ख़बर न हूंदी त असांजी स्किन सेंसिटिव आहे. मतिलबु उन्हनि खे इहा ख़बर न हूंदी उन सेंसिटिव स्किन जे मथां हू तरह तरह जा प्रोडक्ट इस्तेमालु पिया कंदा आहिनि. ऐं इस्तेमालु करण जी वजह सां छा थींदो आहे जी स्किन जेका न हमेशह ख़राब रहंदी आहे. तयारु थियल आहे मेडिकेटेड फार्मूलो आहे डॉक्टर्स जी निगरानी जे अंदरि. बिल्कुलु हिन खे डॉक्टर्स खे विहारे करे तयारु कराई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि वाइटमिन ई बीड्स आहिनि, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन आहे. उन खां अलावा तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ 2 रातिनि जे इस्तेमाल में. छा त समुझो, चौक जी वई न. बिल्कुलु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि मूंखे ॾाढी वणंदी आहे त तव्हांखे वेट न कराईंदी बाबा. तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ 2 रातिनि जे अंदरि रिज़ल्ट ॾींदी. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो त तव्हांखे इहा बि ख़बर हुजे त 2 दिनों में जब आपको रिज़ल्ट दे दे तब आप लोग ये ना समझे कि बस जो हमें रिज़ल्ट मिल गया तो ये अगर हम प्रोडक्ट को इस्तेमालु करणु छोड़ देंगे तो हमारी ख़ूबसूरती कहीं गायब हो जाएगी. ऐसा भी नहीं होगा. जो आपको ख़ूबसूरती मिल गई है वो बस आप ही की है, आप रख लें. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि सिर्फ 2 दिनों में आपको वाजे नतायज देती है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई जैसे कि अल्फा आर्बुटीन, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन. इस तरह जो है ना ये तमाम चीजें अगर आपकी स्किन के ऊपर आती है रात भर आपके चेहरे पर जब मौजूद रहती है तो आपके जल्द को चमकदार बनाती है. डार्क सर्कल्स हों या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा निशानात आ चुके हैं या फिर आपकी जंगत जो है वो बड़ी सांवली सी हो चुकी है तो ये तमाम चीजें जो है वो खत्म हो जाती है. और उसके अलावा आपके चेहरे पर नमी फराहम कर देगा और जल्द को गहराई से मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी जल्द अगर किसी भी तरह की हो, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के मुताबिक डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. इसे लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे. भई सभिनी जो हक़ आहे न ख़ूबसूरत थियण, सो तव्हां सभई लॻाइजो, मर्द मायूं सभु. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हां डी स्किन फेस वॉश खे न विसारिजो बाबा, न त रोईंदो वीचारो. डी स्किन वॉश बि तव्हांजे लाइ आहे. डी स्किन फेस वॉश जी ॻाल्हि कई वञे त डी स्किन फेस वॉश जेको आहे हायलोरोनिक एसिड सीरम सां तयारु थियल आहे, जेको एतिरो ज़बरदस्त सीरम हूंदो आहे. तव्हांजी स्किन जे अंदरि वेंदो आहे त तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट कंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे क्लीन कंदो आहे, मॉइस्चराइज़ कंदो आहे ऐं डीपली तव्हांजी स्किन जे अंदरि तक वञी तव्हांखे ग्लो ॾींदो आहे. सो डी स्किन अगर तव्हां फेस वॉश लॻायो पिया त तव्हां ख़ुशि थी वञो छो त तव्हां वटि हाणे तमामु ज़बरदस्त फेस वॉश अवेलेबल आहे. ही तमामु जेके प्रोडक्ट आहिनि, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे, ही प्रीमियम क्वालिटी वारा प्रोडक्ट आहिनि. जे तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां वाक़ई केॾा सुठा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु शुरू कया आहिनि. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हां डी स्किन फेस वॉश हणो. सफ़ा का टेंशन जी ॻाल्हि कोन्हे बाबा, सफ़ा VIP ऐं स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट आहिनि. उन खां अलावा अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे, अगरि हीउ नंबर नथो मिले त ॿियो नंबर आहे 03-32-73-84-309 03
3274309 ये नंबर आप डायल करेंगे और आपको बताया जाएगा, गाइड किया

नाही छायो मुमकिन आहे आहे आहे प्रोग्राम सुन रही है वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा हमारे साथ यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं तो कौन कौन मौजूद हैं? अरिबा कहती है ओ मेरी प्यारी आपी हाँ पी जान अच्छा आबिद रसूल आबिद रसूलाबाद खान जे को भाषा के बुद्धि पयो ता बरकत भट्ट जो गानो चयो मायने में थोड़ो कंफ्यूज थी वियम त बरकत भट्ट जो का बरकत अली आहे तो मु सर्च कयो त बरकत अली हुयो बरकत भट्ट मुखे कोन मिलियो तो अगर वो सेम सिंगर आए तो मुखे बुधाए तो तांज लाइ गानो हलाइना सी समझो ता मां थोड़ी सिंधी सिंगर्स में मां कंफ्यूज आया छो त मेरा साबुन स्लो है। अच्छा उन खां अलावा गुलशेर बाबर एंड मुजम्मिल बाबर विलेज अला वरायो बाबर से असां सां गॾु मौजूद आहिनि सो भाइरनि जो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया मैसेज छा तव्हांजो मिसिंग पार्ट थी वियो आहे और ये मौजूद आहिनि अस्सलाम वालेकुम सिदरा मुस्कान कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा फौजी पठान खान खोसो है सिदरा गानो लिखियो आहे तव्हां डेडिकेट कयो आहे हसीना सूमरो खे डॉक्टर हसीना सूमरो खे ओके। अच्छा इनम कहती है प्यारी

ओके जी, सोनी कहती आप ही जान में भी आ गई, आप ही सुबह कब होगी, आप ही कल के दिन का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। अगर आप इंतजार करें तो आपको आज का दिन बहुत बड़ा लगेगा, गुजरेगा ही नहीं। तो वेट करना चाहती है तो बस थोड़ा सो जाए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैं ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ लेकिन मेरा दिन नहीं गुजरा तो फिर मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ जी अब जो वक्त है वो तेजी से गुजर गया है। और शायद बबर की आवाज में हमने यहाँ पर गाना लगा लिया है, शाह जमाने मूसा घट गई हुई जो तू भी निकली आए।

प्रोडक्ट जितावन सा तो अगर तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया या करंट सायो था तो तहां लाजमी इस्तेमाल करी दिस जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे का है सारी दुनिया खावा एतरी जबरदस्त क्रीम था अगर तहां इस्तेमाल करी दिसना तहां के खबर पेजी वे एक तो मेडिकेटेड फार्मूलो आ है बेओ तो डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तैयार थेल आ है त्यो तो बिन डीन में तहां के रिजल्ट दींदी आई चौथों तो सब इन जे अंदर जे के चीजों एड थेल आ है वो सब तहां जे स्किन जलाए जरूरी आ है तो ये सब चीजों जडे मिली करे तहां के निखार दींदी तहां के रिजल्ट मिलंदो तो तहां खुश थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई गड तहां डी स्किन जो फेस वॉश भी वठी सगो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो आई डी स्किन फेस वॉश हणो न था मिलन ते जे के नंबर बुधा दो न ते राबतो करी वठो

दिस गलत गाला। ओके आबिद भाई माँ समझी हुई हम ठीक आए, थैंक यू सो मच। हाँ वावना जी कास्ट होंगी ना करी करी माँ वाकई अड़ा कम करी वेंदी है जो पानी खिल लेंदी है। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी हैप्पी गर्ल, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये रुखसार मरी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा आप ही क्या हाल है, आपका शो सुन रहे हैं आप ही। अच्छा कहती है कि मैं अभी 16 साल की हूँ तो मैं ब्यूटी क्रीम नहीं लगाती लेकिन हाँ फेस वॉश लिया है, अम्मी और सिस्टर यूज कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। रुखसार मरी मीरपुर खास से, क्या बात है आपको खुशी कहा जाता है। वैसे कौन सा फेस वॉश लिया है, व्हाइट इश का या डी स्किन का।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी तवाने मोटी ना तवा इते बैठा हो जो कारी न मंजो सब पानी सीर त न जो मा ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश इंडी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए

0: Moro no Shadow.
1: It's time to commercial break.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप पी और खुले मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: खूबसूरत ये जो बीट्स एंड जदीद माइक्रो बीट्स फार्मोलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल जहां माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स के जेर अकाउंट सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स सर्जिकल और मेडिकल सहूलियात मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस इंसानियत की खिदमत हमारा मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल मीरवा रोड मस्त डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए 03-4134-29824।
5: सिंधड़ी आमो की सरजमी
6: अवां चायो था अवां जी प्रोडक्ट जी मशहूरी थिए तपोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास एफएम 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास एफएम 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास एफएम 88 वधिक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 03227243010 3722071
7: मीरपुर खास की आवाज
8: हर दिन की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
9: लगे तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सुना तो करें
10: कि हाँ वाकई फायदे वाली है चा
9: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासर थे हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आए सोडी आराम पहुँचाने में मदद दे थी
10: सिर्फ चेल सूर लाए
9: ना दा असाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ है सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है
10: इस्तेमाल किए कजे
9: मुतासिर थे हंद ते डीह में बखा टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
11: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो

0: प्रोग्राम रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क मौजूद है हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन खेरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा के साथ। और जी मेरे साथ कौन कौन है कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं बताइएगा। और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

गाना कितना सुंदर है सुनकर, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है. समझ नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनकर. तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं. आप लोगों को बताया जाता है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए. उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिले, तो आपके लिए नंबर है जो कि प्रोग्राम में बताती हूँ, ताकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके और आपको आसानी हो. अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो नंबर है जनाब 03 1250 25 907, या फिर दूसरा नंबर है 03 32 73 84 309. ये नंबर है जो कि आपकी आसानी के मुताबिक है कि आप इन्हें डायल कर सके और इनसे मालूमात ले सके, वो मालूमात जो आप लोगों को शायद मुझसे नहीं मिलती. और इसके साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी से अवेलेबल कराइए. और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, दिन आप इस्तेमाल कीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें

हाय क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो जरूर कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ये फुल मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे इस्तेमाल करते साथ आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे जिसे लगाने के बाद आपकी स्किन मजीद खराब हो चुकी है। ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश का भी इंतखाब करेंगे, दोनों चीजें साथ में लगाइएगा। इसी के साथ साथ मैंने जहाँ पर आप लोगों से जो सवाल पूछा है टॉपिक प्रोग्राम का ये है कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर में खाया जाता है, किस शहर के लोग जो है वो सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं, और इसके साथ साथ

बोल रही, तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो। साथ साथ ये गाना डेडिकेट जाता है अली मुर्तजा के नाम। अली मुर्तजा ने जो चौपे का जवाब दिया था वो बड़ा वखरा दिया था, लेकिन क्या ही बात की आपके जो कमेंट है वो ऊपर चले गए। वैसे वो ड्रामा मैंने देखा नहीं, लेकिन ड्रामे की थोड़ी सी क्लिप्स देखी थी, उसमें ये पता चला था कि वाकई डिलीवरी बॉय होता है उस पर उसका दिल आ जाता है। सही है भाई, शुरू करें आप भी नेकी और पूछ। नजीबुल्ला बिरोही हमें सुन रहे हैं। हाय, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ओके जी, ओके, मुझे बात समझ आ गई। और मोहम्मद समान कहते हैं बुआ क्या भाई, आप ऐसा कीजिए मोहम्मद समान, आप डी स्किन का फेस वॉश जो है ना वो लगा के देखिएगा। सच्ची मुझे बता रही हूँ, बहुत कमाल का फेस वॉश है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का। और मुश्ताक मुश्ताक बलोच हमारे साथ, आपको भी वेलकम कहा जाता है।

गई जी, महबूबा है और महबूबा की क्या बात है। और वहीद वफाई कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी, क्या हाल चाल है आपकी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बेहतरीन है। जेकब आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। रुखसार मरी कहती है डी इस किन लिया है, बलोची सॉन्ग सुनाएं, डेडिकेट हमारी पूरी फैमिली और आपको, बलोची गाना आपने सुना होगा। और अब्दुल रजाक बलोच हमें सुन रहे हैं, दादू से वेलकम जी। इस गाने के साथ बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है।

अरे भाई जवाब बताने कितनी जल्दी क्या है बताऊंगी, अभी तो टाइम पड़ा है, रुको जरा सब्र करो। यूनिस खोड़ो हमें सुन रही है, कहते हाय अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रमजान लिखते हैं कि कहते तो जो दिल क्या चीज है जहाँ भी लुटा देंगे, आज कहते हैं छोड़ दो हाथ मेरी इज्जत का सवाल है। वाह साईं वाह। अच्छा ये किशोर भाई हमारे साथ, कहते सलाम अदा की आयो, खुश चाक चंगा भला डियो, खबर है सब खैर ता है, सब खैर मजे में ता बताया, घुमे फिरी मजा करी आयो। अच्छा दर्द दिल कहती है चंदा कल से इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही है। नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, वैसे क्या है कि कभी कभार इंसान को थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए। और ये मैंने गाना लगाया है जी बरकत अली की आवाज में।

પાંજી કારે વગે સાંત લા પાંજી ઓનડી માકડી રીલ દીઠી જે મે એકડો માણો ચે પ્યો ત ચવન થા તે કારો વગો લહે નતો અસાયો જે કી કારો વગો ઠહે નતો ઓ ચીજ વાકે થોડી લગી ત કુછ કુછ માણન કી કારો વગો વાકે નાય ઠ કુછ માણન કી વડી ડાડુ ઠંદો સો ગાલ તે ઠણ જી નાય પર કુછ માણો વરી આશકી જે તોર તે કારો વગો પાઈંદા સો ખે कारो वगो पाइन जो शौक थे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी हण जो ठीक है जे तागे ठे कारो वगो ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ताके मिले थी गड ताके डी स्किन जो फेस वॉश भी मिले तो आने तमा ते ता बई चीजो लगाया था या जेका दिल चवा चवे तमा जी सा तमा लगाए सको था और किशोर भाके थे अदा घबरान आओ आ गया हूं भलो कयो तब और हैं जी हमारे साथ ये हैप्पी गर्ल क्या कहती है मैं आपके शो की दीवानी हूँ मतलब आपके लिए पागल हूँ सच्ची बताएं अच्छा ए मंसारी कहती ऑरेंज कलर वाली ये ना करे भाई दिल को संभाल के रखे जरा अच्छा दिल के संभाले रखो बाबा संभाले रखो कम ही दव अच्छा मोहम्मद रहीम राजड हमारे साथ है वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम तवा के वणी पयो थैंक यू और अली मुर्तजा कहते सेम हियर पीटीवी का वो दौर मेरे टाइम में एटीवी आ चुका था और एटीवी पर ये ड्रामे गाने चलते थे शाम के टाइम पर एक शो चलता था उसका पता नहीं क्या नाम था थोड़ा अजीब सा नाम

अजीब सा मतलब डिफिकल्ट था, याद नहीं रहा, तो वो हम देखते थे, वो पसंद होता था शुरू से, बचपन से मुझे गाने सुनना और देखना बड़ा पसंद था।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान में एक मंसूबे दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क के भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलोचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चे तो अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकने में नाकाम व्यून सभी के गजी दहशतगर्दी के मुकाबलो करो पव। बलोचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती ला कम किया है। बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। सैयद आसिम मुनीर इसहाक डार जो कोशिशों सारा जोगियो हैं। फितनल खवारज के दहशतगर्दन जो केपीए के इलाके टांग में पुलिस चेक पोस्ट से बुजदलानो हमलो 15 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की वक्त सिर असरायती कार्रवाई दहशतगर्दन जा नापाक इरादा नाकाम बनाए छड़िया। जवानन गैर मामूली जुरियत पेशवरान महारत से फरार थींदड़ 12 खारजिन के जहनम भेड़ो कर छड़ियो। आईएसपीआर मूजिब दहशतगर्दन बारूद से भरल गाड़ी चेक पोस्ट के हिफाजती भित से टकराए छड़ी। नतीजे में 15 बहादुर जवान शहादत जो जाम नवेश कयो। शहीद थियलन में 12 फौजी जवान 2 पुलिस अहलकार एक बेले खाते जो ऑफिसर शामिल है। सदर वजीर आजम पारा टाक में चेक पोस्ट से हमले की मजम्मत खाद की मारण से फोर्सेस के भेटा पेश।
1: कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए? क्या किया बताओ मुझे जरा। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूँ आजाद कश्मीर के लिए। अवलीन तरजीह इन नौजवानों को तालीम देना होगी। तालीम यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेंगी।
0: बिलावल साईं कावड़ न कजो, ही कश्मोर न पर कश्मीर ए मीरपुर खास न पर मीरपुर आए। सियासत में हल्कन फुल्कन जुमलन की डेवट थियण घुर्जे पर वेड़ थियण न घुर्जे। नून लीग का सवाए बे कें भी कश्मीर लाए कुछ भी ना कयो। मीरपुर समेत समूरे कश्मीर की तकदीर बदलाए छींदी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो मीरपुर में चूंड जलसे के खिताब। नवाज शरीफ चयो तो आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होजन घुर्जे। दिल ए कैंसर जो अस्पतालों भी कायम थियण घुर्जन। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज खिताब कदे चयो तो आजाद कश्मीर के चूंड में नून लीग भरपूर नमूने कामयाबी माणींदी। कश्मीर में सब कुछ आए रुगो एक ही खोट आए तो नवाज शरीफ की हुकूमत न आए। कश्मीर में वसीलन जज्बे की खोट न पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की खोट आए। आजाद कश्मीर में नून लीग सभी का गोए खड़ी वेंदी। पीपुल्स पार्टी अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ के बयान के गैर संजीदा खिल जोगो करार दई छो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण है तो नून लीग खेराती मेंडेट वारी पार्टी आए। उन वाता इलेक्शन ए वोट जो गाली सुठियो नथियो लगन। नवाज शरीफ साहब यो बुधाए तो वोट के इज्जत कदें डेणी आए। कें भी सूबे शहर या इलाके की तोहीन कबूल जोगी ना। बयान लखें पाकिस्तानिन कश्मीरन ए सिंधिन जा जज्बा मजरू कया आयन। सिंध ए कश्मीर जा मानू पांजे सरजमीन तोड़ी सुजाना पते फखर कन था। कैंखे भी हक ना है ता सिंधिन ए कश्मीरन के सियासी तंज जो निशानो बनाए। सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह चयो आए ता कश्मीर होजे या कश्मोर, मीरपुर होजे या मीरपुर खास, पाकिस्तान जो हर इलाको फख्र जोगो आए। जाती मफादन खां मथां थी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो एहसास होना घुर्जे।

वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जी सब खां वॾी डेटा सेंटर स्काई 47 कराकरम हाई वन वे जो इफ्तिताह करे छॾियो। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग ऐं डिजिटल ख़िदमत लाइ मज़बूत बुनियाद फराहम कंदो। सेंटर हथरादो ज़हानत, मशीन लर्निंग ऐं हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग जूं घुर्जूं पूरियूं करण जी सलाहियत रखे थो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त मारका हक में कामयाबी मुल्की तारीख़ जो अज़ीम तरीन लम्हो हो। ॾुखियाइनि ऐं चैलेंजिस जो हौसले सां मुक़ाबिलो करियो त मारका हक जहिड़ा तारीख़ी कारनामा जनम वठंदा आहिनि। लाॻीतो महिनत अहिड़नि अज़ीम मनसूबनि खे हक़ीक़त रूप ॾींदी आहे। स्काई 47 जहिड़ा मनसूबा पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहिनि।

सिंध की राजधानी कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकन में किथे तेज त किथे हल्की बरसात। कराची के मंगो पीर गुलशन मैमार गुलशन इकबाल साइट एरिया भरपासे वाले इलाकन में तेज वसकारो। सदर एम ए जनारो डिफेंस क्लिफ्टन शाराए फैसल कोरंगी बहादुर आबाद बल्दिया गुरु मंदिर नॉर्थ कराची नॉर्थ नाजिमाबाद ए बी एरिया बिन इलाकन में हल्की बरसात। वसकारो शुरू थींदे ई के इलेक्ट्रिक जा 100 खां वधीक फीडर ट्रिप उमरकोट सामारो ढोरो नारो टंडरो बागो तलार नूरियाबाद ए बिन इलाकन में बरसात खां पोए मौसम खुशगवार। खिपरो में खिविण किरण सबब चैन वरन जो बाड़ो विनोद कुली फोत एक जख्मी।

0: हुकूमत लागी तो पंजे ॾींहं बि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में पेट्रोल 60 पैसा ऐं डीज़ल 4 रुपया 80 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 335 रुपया 18 पैसा ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 383 रुपया 46 पैसा फी लीटर थी वई। जारी थियल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघ 24 कलाकनि लाइ लागू हूंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी धमकी। अमरीकी सदर चयो आहे त जेकॾहिं चीन ऐं रूस ईरान खे हथियार ॾिना त हुन जा संगीन नतीजा निकिरी सघनि था। बीजिंग में गॾिजाणीअ दौरान चीनी सदर खे ख़ातिरी कराई त चीन या चीनी कंपनियूं ईरान खे हथियार फराहम न कंदियूं। रूसी सदर प्यूटिन बि ॿुधायो त मॉस्को ईरान खे हथियार विकिरो न कंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़ी पॉलिसी ख़िलाफ़ हैदराबाद में मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाजी मार्च खां पोइ धरणो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी गॾियल चटाभेटी 2024 जे नतीजनि में मुबैना बेज़ाब्तगिन मेरिट जी लताड़ ऐं कुरबा परवीह ख़िलाफ़ SSP आफ़िस अॻियां धरणे दौरान मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जुमे जी निमाज़ बि अदा कई। सॼो ॾींहुं लॻल धरणो ख़तम करण खां पोइ मुतासिर उमेदवारनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़िस अॻियां एहतजाजी कैंप क़ाइम करे छॾी। शागिर्द अॻवाननि चयो त चटाभेटी इम्तिहाननि 2024 जा नतीजा रद्द करण समेत ॿिया जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया विया त एतिज़ाज जो दायरो वधायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।

भारत में जेएनसीजी पेपर लीक के खिलाफ तहरीक कामयाब। भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तफी जेएनसी जो जंतर मंतर जशन पेपर लीक था शुरू थियल तहरीक भारतीय वजीर आजम मोदी के गोडा खोड़ण ते मजबूर कर छो। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियल वजीर आजम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर कर वरती। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जेएनसी जो जशन। पुलिस पेपर लीक खिलाफ एहतजाज कंदड़न ते नई दिल्ली में तशद्दुद भी कयो हो। चीन पारा खिते में जारी सूरत हाल ते गणती जो इजहार। अमेरिका ईरान का मसले की हल लाए जल्द गाल शुरू कर मुतालबो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी परदेही वजीर पारा ईरान की खुदमुख्तियारी की हिमायत। वांग जी चयो तो इस्लामाबाद मुफामती याददाश्त नामो खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान में बेन मुल्कन की टाकड़ी वाली कोशिशों की हिमायत जारी रख। अब्बास राखची चयो तो अमेरिका जंगबंदी मुआदे की भंजकड़ी कंदे ईरान से हमला कया। तहरान की गाल वाली ख्वाहिश बरकरार है। छिकताण में वाद न था चाहूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकार से मुलाकात। ईरान खिलाफ वडन हमलन ते गौर विचार। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान ते वडे हमले बाबत अजा फैसलो ना कयो। ईरान गाल संजीदा आहे मुआदो करण नथो चाहे। तहरान सा राबता जारी आहिन नतीजन जो इंतजार आहे। सऊदी अरब के इब्राहिम मुआदे जो मेंबर होवन घुर्जे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिस्सो न बणजो तो एटमी मुआदो न कंदासीं। ट्रंप के चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करने संगीन नतीजा भोगण की भी धमकी।

पंजाब के मुख्तलिफ़ शहर में चौमासी जा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, विहाड़ी ए बेन शहर में बरसात। मुख्तलिफ़ रोडन ते गोडे जो पानी बीठल, शहरी सख्त परेशान। शहदाद कोट की कार इल्जाम हेठ जवाबदार पी हथा धी ए नौजवान कतल। संजर भट्टी थाने की हद में जवाबदार अली बख्श जतोई अफरोज इम्तियाज शाह के गोली हणी कतल कयो। वाके बाद जवाबदार फरार। पुलिस जो चवण है कार इल्जाम हेठ बिटो कतल थियो आहे। वधीक जांच जारी आहे। बबरलो धरने ते चढ़ाई ए गिरफ्तारन खिलाफ जस्कम जा कश्मोर ए गढ़ी यासीन में मुजाहरा। कश्मोर में जस्कम कारकुनन प्रेस क्लब आदो एहतजाजी मुजाहरो करे नारेबाजी कई। गढ़ी यासीन में प्रिया एक्शन कमेटी के अगवाणन ते केस दाखिल थियण खिलाफ एहतजाज कयो वियो। अगवाणन जो चवण आहे त प्रिया कुमारी ए सिंध के बारन की बाजियाबी लाए लगल कैंप ते चढ़ाई मज़म्मत जोगो अमल आहे। अगवाणन ते दाखिल कयल दहशतगर्दी जा केस खत्म करे मुगवी बारन के बाजियाब करायो वञे। नसीराबाद में अवामी तहरीक जो जलालपुर कैनाल ए सिंध में पानी कोट खिलाफ एहतजाज। अवामी तहरीक के कारकुनन गोठ मिठल चांडियो खां सिमशाक तई रैली कढ़ी। अगवाणन जो चवण हो तो पंजाब पारां गैर कानूनी तौर ठायल जलालपुर कैनाल बंद करे सिंध के हिस्से जो पानी दिनो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
2: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
1: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
2: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे।
2: रुगो मुतासिर हंध ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध। जेकर उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञा।
1: वाह, पोए अॼु ई वठींदसि।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
3: जी एफ एम 90.8।

0: Thank you.
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज।
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

भारत में मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ जेएनसी की तहरीक आडो घोड़ा खोड़े छड़ा। भारत जो तालीम वर वजीर मुस्तफी नौजवान जो जंतर मंतर ते जश्न। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियल वजीर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर करे वरती। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जेएनसी जो जश्न। काकरोच जनता पार्टी तालीम वाले वजीर की इस्तीफा ए हकूमत से गालन बाद एहतजाज खत्म करने जो ऐलान करे छोड़ो।

सिंध में मेरठ की लताड़ पांजा नवाजी खिलाफ नौजवान सरापा एहतजाज। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिस आडो नौजवान के एहतजाजी कैंप बे डी भी जारी। नौजवान रात बे कैंप से गुजारी। मुतासर उम्मीदवार ने शागिर्दन पारा चटाभेटी इम्तिहान 2024 के नतीजन के रद्द कर कमीशन में सुधार ती एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहरीन मूजिब मुतालबन की मंता लाए एहतजाजी कैंप एक हफ्ते तीन जारी रही जै बाद आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान किया वो। चीन पारा खिते में जारी सूरत हाल से गणती जो इजहार। अमरीका ईरान का मसले के हल लाए जल्द गाल शुरू कर मुतालबो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची की चीनी हमनसब वांग यी से किर्गिस्तान में मुलाकात। चीनी परदेही वजीर पारा ईरान की खुदमुख्तियारी की हिमायत। वांग यी चयो तो इस्लामाबाद मफामती यादाश्त नामो खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ वञण जो वाहिद रस्तो है। बीजिंग पाकिस्तान ए बेन मुल्कन की ट्रैकड़े वाली कोशिशों की हिमायत जारी रखो। अब्बास राखची चयो तो अमरीका जंगबंदी वायदे की भंज कड़ी कंदे ईरान से हमला कया तालिन वाली ख्वाहिश बरकरार है छिगतान में बाद न चाहू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकार से मुलाकात। ईरान खिलाफ वडन हमलन ते गौर विचार। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान ते वडे हमले बाबत अन्या फैसलो ना है कयो। ईरान गालने लाय संजीदा आहे मायदो करण नथो चाहे। तेहरान सा राबता जारी आहन नतीजन इंतजार आहे। सऊदी अरब के इब्राहिम मायदे जो मेंबर होण घुर्जे। सऊदी अरब इब्राहिम मायदे जो हिस्सो न बणजो तो एटमी मायदो न कंदासीं। ट्रंप के चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण की भी धमकी। सऊदी इतिहादी फौज पारा यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट ते हमले की तस्दीक। सऊदी इतिहादी फौज चयो है तो यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी फौजन ठिकाणन स्ट्रेटजिक हंधन के निशानो बनायो। अल हुदैदा बंदरगाह के निशानो नाहे बनायो वो समूरी बंदरगाहों जहाजन के अचवण लाय खुलल आहिनि।

सिंध में बदअमनी ए करप्शन चोट चढ़ियल है। कराची समेत सूबे जा शहर खंड बणियल है। कराची के भी अड़न साल दौरान तबाह किया वो हेठी सतह तई अख्तियार की मुंतकिली लाए सब आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदी। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल है तो सिंध में 2 करोड़ 60 लख बार स्कूलन का बाहर आन। मुगवी बार की बाजियाबी ला एहतजाज कदड़ मायरन से भी डंडा वसाया वह। सिंध में लुटियल पैसो दुबई में लगाया वो जै सबब दुबई में मिल्कियतू महंग थन। बलोचिस्तान के मस्तोंग वाले इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन लज़म जारी। सिक्योरिटी जरियन मूजिब मुख्तलिफ कार्रवाई दौरान दहशतगर्दन जा केतरा ही थाक तबाह किया वह। ऑपरेशन लज़म दौरान मारजी वेल दहशतगर्दन जो अंग वधी 13 थी वो। कराची में HIV जो गणती जोगो फैलाव। अस्पतालों बारन में HIV वायरस की पखेड़ जो सबब बणज लगे। वलीका अस्पताल का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडी में भी HIV जा केस जाहिर। 4 महीनों का 8 वर्ष की उम्र तीन 15 बारन में HIV की तस्दीक। जनवरी में 4, फेबरवरी में 2, मार्च में 1, अप्रैल में 5, मई में 3 HIV केस रिपोर्ट थे। मामले के दबाने की कोशिश कई वही वधिक एक केस जाहिर थियण जो खदशो। जरियन मूजिब HIV मुतासर बारन जो इलाज सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडी में थियो। वलीका अस्पताल में 78 बारन में HIV जा केस जाहिर थिया हुआ। 9 बार HIV सबब फौत थी चुका है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ ॾींहं खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़, अया साबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
2: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण, ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध में अॼु खां 27 जुलाई ताईं बरसातुनि जी अॻकथी, कुझु ज़िलनि में शहरी ॿोॾ जो बि ख़दशो ज़ाहिर। मौसमियात खाते मूजिबि कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, बदीन, सांगढ़, टंडो मोहम्मद ख़ान, मटियारी ऐं शहीद बेनज़ीराबाद ज़िलनि में अॼु खां 27 जुलाई ताईं किथे हल्की त किथे तेज़ बरसात जो इम्कान आहे। इम्कानी बरसातुनि खे नज़र में रखंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सीएम हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क क़ाइमु करे छॾी। लागापियल इदारनि खे मुतहरिक रहण जी हिदायत।

पंजाब के मुख्तलिफ़ शहर में चौमासी जा वस्कारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, विहाड़ी ए बन शहरों में बरसात। मुख्तलिफ़ रोडन गोडे जो पानी बीहजी वो, शहरी सख्त परेशान।

भारत में मोदी सरकार पेपर लीक खिलाफ जेंजी की तहरीक आडो गोडा खोड़े छड़ा। भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तफी नौजवानन जो जंतर मंतर जशन। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी तल वजीर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा मंजूर करे वरती। तालीम वाले वजीर जी इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जेंजी जो जशन। काकरोच जनता पार्टी तालीम वाले वजीर जी इस्तीफा हुकूमत से गालन बाद एहतजाज खत्म करने जो ऐलान करे छोड़ो।

सिंध में मेरठ जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज बणियल। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी आफ़िस आॾो नौजवाननि जे एहतजाजी कैंप ॿिए ॾींहुं बि जारी। नौजवाननि राति बि कैंप ते गुज़ारी। मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि पारां चटाभेटी इम्तिहान 2024 जे नतीजनि खे रद्द करण ऐं कमीशन में सुधारनि ताईं एहतजाज जारी रखण जो ऐलान। मुज़ाहिरीन मूजिबि मुतालबनि जी महिता लाइ SPSC में एहतजाजी कैंप हिकु हफ़्ते ताईं जारी रहंदी, जंहिं बाद आईंदा जी हिकमत अमली जो ऐलान कयो वेंदो। चीन पारां खिते में जारी सूरतहाल ते गणतीअ जो इज़हार। अमरीका ऐं ईरान खां मसइले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राग़ची जी चीनी हमनसब सां मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त खिते में अमून इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जी ट्रियाकड़ियुनि वारियुनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास राग़ची चयो त अमरीका जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जी ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे, छिकताण में वाद नथा चाहियूं।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकारन से मुलाकात ईरान खिलाफ वन हमलन से गौर विचार सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान से वे हमले बाबत अजा फैसलो ना किया ईरान गाल संजीदा है मुआदो कर नो चाहे तहरान से राबता जारी है नतीजन जो इंतजार है सऊदी अरब के इब्राहिम मुआदे जो मेंबर होने घुर्जे सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिस्सों न बणज दो एटमी कहीं ट्रंप की चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करने संगीन नतीजा भोगण की भी धमकी
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द पट्ठों के खिंचाव कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम दर्द सोजन वरम फौरी खत्म आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

घरू वजीर मोहसन नकवी की सदारत हेठ बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से कोइटिया में अहम इजलास वडे वजीर सरफराज बुख्टी ब्रीफिंग दिनी मोहसन नकवी तो वफाक बलोचिस्तान में अमन अमान की क्याम लाए सहकार जारी रखो बलोचिस्तान के वडे वजीर सरफराज बुख्टी तो दहशतगर्दी खिलाफ हर महाज से कदम अगते रहंदा दबाव में न ईंदासीं।

भारत में मोदी सरकार पेपर लीक खिलाफ़ जे एन सी की तहरीक आडो गोडा खोले छा भारत के तालीम वाले वजीर इस्तीफा दे छी नौजवानों को जंतर मंतर जशन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफ़ी थियल वजीर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर कर वरती तालीम वाले वजीर के इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जे एन सी खुशी में झूमियो थे काकरोच जनता पार्टी तालीम वाले वजीर के इस्तीफा और हुकूमत से गालन बाद एहतजाज खत्म करने जो ऐलान कर छोड़ो।

0: लॻे थो त ई छोकिरा थकिजी पिया आहिनि, ई छोकिरा मायूस थी विया आहिनि। असां सिंध जो हिकिड़ो पढ़ियल लिखियल शौर आहियूं, जेका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जी तयारी कई आहे असां। असां थकंदासीं कोन, असां आख़िरी दम ते विढ़ंदासीं।
1: जॾहिं तव्हां पंहिंजे हक़ लाइ बीहंदव न, हक़ तव्हांखे कॾहिं बि घुरंदव हक़ कोन मिलंदो आहे, हक़ लाइ विढ़णो पवंदो आहे। इहा तारीख़ रही आहे जेको आहे, उन्हनि खे रिज़ल्ट कोन था मिलनि। घुरनि छा था, छा था घुरनि? हिकिड़ो त पॉइंट आहे
2: एस पी एस सी, असांजा मुतालबा सी सी 24 खे नल इनवाइट न कंदी, हिते भर्तियूं न कंदी। तेसि ताईं असां कैंप खे हिते रहंदासीं।
3: हिन इदारे में ट्रांसपेरेंसी शफ़ाफ़ियत थी वञे, करप्शन जो इदारो गड़ा।
4: सिंध में मेरिट जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़ ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज बणियल। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी आफ़ीस आॾो नौजवाननि जे एहतजाजी कैंप ॿिए ॾींहुं विचारी। नौजवाननि राति बि कैंप ते गुज़ारी। मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि पारां चटाभेटी इम्तिहान 2024 जे नतीजनि खे रद्द करण ऐं कमीशन में सुधारण ताईं एहतजाज जारी रखण जो ऐलान। मुज़ाहिरनि मूजिबि मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाजी कैंप हिकु हफ़्ते ते जारी रहंदी, जंहिं बाद आईंदा जी हिकमत अमलीअ जो ऐलान कयो वेंदो। चीन पारां खिते में जारी सूरतहाल ते गणतीअ जो इज़हार। अमरीका ऐं ईरान खां मसइले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राग़ची जी चीनी हमनसब वांग यी सां किर्गिस्तान में मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामो खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जी ट्रैकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास राग़ची चयो त अमरीका जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जी ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे, छिकताण में वाद नथा चाहियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वेझनि सलाहकारनि सां मुलाक़ात। ईरान ख़िलाफ़ वॾनि हमलनि ते ग़ौर वीचार। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते वॾी हमले बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे कयो। ईरान ॻाल्हियुनि लाइ संजीदा आहे त मुआदो करणु नथो चाहे। तहरान सां राब्ता जारी आहिनि, नतीजनि जो इंतज़ारु आहे। सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआदे जो मेंबर हुअणु घुरिजे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिसो न बणजंदो त एटमी मुआदो न कंदासीं। ट्रंप जी चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। सऊदी अरब ऐं यमन जे हूसी बाग़नि विच में छिकताण वधीक तेज़। यमन जे अल हुदैदा गवर्नर रेट ते सऊदी जे हमले खां पोइ हूसी बाग़नि पारां सऊदी अरब जे शहर जाज़ान ते मिज़ाइल हमले जी दावा। सऊदी इतिहादी फ़ौज चयो आहे त यमन जे अल हुदैदा गवर्नरेट में बंदरगाह खे न पर हूसी फ़ौजी ठिकाननि स्ट्रेट जे हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। सिंध में अॼु खां 27 जुलाई ताईं बरसातुनि जी अॻकथी। कुझु ज़िलनि में शहरी बोर्ड जो बि ख़दशो ज़ाहिर। मौसमियात खाते मूजिबि कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, सांगर, टंडू, मोमन खान, मटियारी ऐं शहीद बेनज़ीराबाद ज़िलनि में अॼु खां 27 जुलाई ताईं किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे। इम्कानी बरसातुनि खे नज़र में रखंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सीएम हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क क़ाइमु करे छॾी। लाॻापियल इदारनि खे मुतहरक रहण जी हिदायत। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में चौमासी जा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफ़िज़ाबाद, विहाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति। मुख़्तलिफ़ रोडनि ते गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल, शहरी सख़्तु परेशान। बलोचिस्तान जे मस्तोंग वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन अलअज़म जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मुख़्तलिफ़ कारवायुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। ऑपरेशन अलअज़म दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 13 थी वियो।

धार सूबे के मुतालबे तां कहीं भी सूरत में हथ न खणंदासीं। सिंध के 21 जिलन में मुहाजर रहन था। असा बाय चांस न पर बाय चॉइस इतने आया आयूं। इन काफिले वजीर आला हाउस जो रुख कयो तो फैसलो थी वेंदो, पर असा मोहब्बत जो पैगाम खणी आया आयूं। एमक्यूएम के कन्वेनर खालिद मकबूर सिद्दीकी जो हैदराबाद में रैली के खिताब। खालिद मकबूर सिद्दीकी चयो तो असा अंग्रेजन सा विढ़ी आजादी हासिल कई, पाकिस्तान के हाँ उन असुल वारसन हवाले कयो वञे।

0: कराची में एचआईवी जो गणती जोगो फैलाव अस्पतालों बारन में एचआईवी वायरस के पखेड़ जो सबब बनजन लगी वलिका अस्पताल का पोए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडिया में भी एचआईवी जा केस जाहिर चार महीनन का अठ वरन जे उम्र ताई जे 15 बारन में एचआईवी जी तस्दीक जनवरी में चार फेबरवरी में ब मार्च में एक अप्रैल में पंज मई में टे एचआईवी केस रिपोर्ट थिया मामले के दबाने की कोशिश कई वही वधिक केस जाहिर थियण जो खदशो जरियन मूजिब एचआईवी मुतासर बारन जो इलाज सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडिया में थियो वलिका अस्पताल में 78 बारन में एचआईवी जा केस जाहिर थिया हुआ नव बार एचआईवी सबब फौत थी चुका है। मीरपुर खास जी मेडिकल कॉलेज में जिन्सी बगड़न हथा हिरासत थियण बाद मुबैना अपघात कंदड़ शागिर्दयाणी फामिदा लिगारे जी खून से इंसाफ लाए वारसन जो इस्लामाबाद में एहतजाज प्रेस क्लब आदो एहतजाज कंदे वारसन चयो तो फामिदा लगारी के यूनिवर्सिटी जी इंतजामिया ए कुछ बेन किरदारन ब्लैकमेल कयो हो जै सबब हु अपघात ते मजबूर थी सिंध जा इदारा बगड़न हवाले थियल आहन छोकरन के ब्लैकमेल कयो वने तो जिम्मेवारन खिलाफ कार्रवाई करे फामिदा जे खून से इंसाफ कयो वने। शहदाद कोर्ट में कारा इल्ज़ाम हेठ जवाबदार हथा भाइटी ए नौजवान कतल संजर भट्टी थाने के हद में जवाबदार अली बख्श जतोई पंजी भाइटी अफरोज इम्तियाज शाह के गोली हणी कतल कयो वाके बाद जवाबदार फरार पने आकिल में भी औरत पना खातू घोटा डे कतल मकतूला जे वेगन पुटन ते कतल जो इल्ज़ाम लखी गुलाम शाह भरसा शहर बिरादरी के बिन धुरन में जेड़े दौरान एक जणो कतल बिन औरतन समेत चार जणा जख्मी गोठ अरबाब शहर में घिटी के गाल जेड़े में करमला शहर मारजी वो औरतन समेत जख्मी थियल चैनी गोठाणन के अस्पताल मुंतकिल किया वो। थानबोला खान भरसा अस्पताल वेंदड़न की गाड़ी हादसे जो शिकार बिन औरतन समेत टे जणा फौत टे जख्मी थानो आरब रोड ते मोड़ काटींदे कार कल्टी थी पई औरत ताजुल नाजा ए ताजो जावल बारड़ू फौत थी पाया टे जणा जख्मी थी पाया पिंगरियो वेझो रोड हादसो गोठ अली खान वासी इमरान अहमदाणी फौत थी वो मुरीद शाख भरसा किरेन जो मोटरसाइकिल की टक्कर औरत समेत टे जणा फौत कौमी शाहरा ते माछी गोठ वट हादसे में बशीरा शफाउल्ला ए मोहम्मद मुजम्मिल फौत थी पाया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सूरत में मोदी सरकार पेपर लीक खिलाफ़ जेंजीअ जी तहरीक आॾो गोॾा खोड़े छॾिया। भारत जे तालीम वारे वज़ीर इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। नौजवाननि जो जंतर मंतर ते जशन। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुस्तफ़ी थियल वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा मंज़ूर करे वरिती। तालीम वारे वज़ीर जे इस्तीफ़ा जो ॿुधी दहली जे जंतर मंतर पार्क में वेठल जेंजी ख़ुशीअ मां झूमी उथिया। काकरोच जनता पार्टी तालीम वारे वज़ीर जे इस्तीफ़ा ऐं हुकूमत सां ॻाल्हियुनि बाद एहतजाज ख़तम करण जो ऐलान करे छॾियो। चीन पारां खिते में जारी सूरतहाल ते गणतीअ जो इज़हार। अमरीका ऐं ईरान खां मसइले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखचीअ जी चीनी हमनसफ़ वांग यी सां किर्गिस्तान में मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे ट्रैकड़ियुनि वारियुनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास राखची चयो त अमरीका जंगबंदी मुआहिदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे। चिकताण में वाद नथा चाहियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वेझनि सलाहकारनि सां मुलाक़ात। ईरान ख़िलाफ़ वॾनि हमलनि ते ग़ौर वीचार। ट्रंप चयो त ईरान ते वॾे हमले बाबति अञा फ़ैसिलो न कयो। ईरान ॻाल्हियुनि लाइ संजीदा आहे, मुआदो करणु नथो चाहे। तहरान सां राब्ता जारी आहिनि, नतीजनि जो बि इंतज़ारु आहे। सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआदे जो मेंबर हुअणु घुरिजे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआदो जो हिसो न बणिजंदो त एटमी मुआदो न कंदासीं। डोनाल्ड ट्रंप जी चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फरम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। ईरानी फ़ौज जे ख़ातिमुल अंबिया मर्कज़ हेडक्वार्टर जे सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी चयो आहे त हू अमरीकी फ़ौज सां इम्कानी ज़मीनी जंग में मुक़ाबले जा मुंतज़िर आहिनि। दुआ आहे त अमरीकी फ़ौज जंग जे मैदान में संदन साम्हूं अचे त जीअं सिधी रीति मुक़ाबिलो करे सघिजे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी बयान में चयो त दुश्मन सां हिकु डिघी ऐं लाॻीतो जंग आहे जेका ख़तमु थियण वारी नाहे। अमरीका ज़मीनी हमिलो कयो त ईरानी फ़ौज उन जो मुक़ाबिलो करण लाइ हर वक़्तु तयारु आहे। सऊदी अरब ऐं यमन जे हूसी बाग़नि विच में छिकताण वधीक तेज़। यमन जे अल हुदैदा गवर्नरेट ते सऊदी जे हमले खां पोइ हूसी बाग़नि पारां सऊदी अरब जे शहर जाज़ान ते मिज़ाइल हमले जी दावा। सऊदी इतिहादी फ़ौज चयो आहे त यमन जी अल हुदैदा गवर्नरेट में बंदरगाह खे न पर हूसी फ़ौजी ठिकाणनि स्ट्रेटजिक हंधनि खे निशानो बणायो वियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि बलोचिस्तान में अमुन अमान जी सूरतहाल ते कोटिया में अहम इजलास। वॾे वज़ीर सरफराज़ बुख्टी ब्रीफिंग ॾिनी। मोहसिन नक़वी चयो त वफ़ाक़ बलोचिस्तान में अमुन अमान जी क़याम लाइ सहकार जारी रखंदो। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ बुख्टी जो चवणु हो त दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी। बलोचिस्तान जे मस्तोंग वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन लज़म जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मुख़्तलिफ़ कारवायुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। ऑपरेशन लज़म दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 13 थी वियो।

0: लगे तो तई छोकरा थकजी पियान ही छोकरा मायूस थी वियान असा सिंध जो एकड़ो पढ़ल लिखल शऊर आयो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जी तैयारी कई है असा थकना से कोन असा आखिरी दम ते विढंदा से
1: जड़े तुम पे हक ला बीहंदो न हक तहे कदें भी घुरंद हक को मिल हक ला विड़ो पवन या तारीख रही है उनके रिजल्ट को मिलन घुरन चाहता घुर पॉइंट आ
2: एस पी एस सी असा मुतालबा सी सी चौवी के नल इनवाइट न कंदी भर्ती न कंदी तेस तीन अस कैम्प के रहें
3: इदारे में ट्रांसपेरेंसी शफाफियत आती वे करप्शन जो इदारो गड़ा
4: सिंध में मेरठ की लताड़ ए पांचा नवाजी खिलाफ नौजवान सरापा एहतजाज बणियल हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस आडो नौजवान के एहतजाजी कैंप बे डी बिचारी नौजवान रात बे कैंप से गुजारी मुतासर उम्मीदवार ए शागिर्दन पारा चटाभेटी इम्तिहान 2024 के नतीजन के रद्द कर कमीशन में सुधार तई एहतजाज जारी रखने जो ऐलान मुजाहरीन मूजिब मुतालबन की मान्यता ला एहतजाजी कैंप एक हफ्ते तई जारी रही जै बाद आइंदा की हिकमत अमली जो ऐलान किया वो

0: कलर है वो पाकिस्तान की कौम है कि जहां हम होते हैं वहां पाकिस्तान होता है। कराची हैदराबाद चलता है तो पाकिस्तान चलता है, उसकी हर जरूरत हम पूरी करते हैं। अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए हम आपसे भीख और खैरात नहीं मांगेंगे। आपको इसी हक नुमाइंदगी के साथ सिंध के शहरी इलाकों तक का हक देना। ये पूरा काफिला हम चाहते हैं कि जागीरदारों से सिंध के किसानों और हारियों को भी आजाद कराएं। सूरज हक परस्तों का होगा, हैदराबाद वालों का होगा, शहरी सिंध का होगा और उसकी क्यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करेंगे।
1: MQM सिंध में धार सूबे वारो रिंगट बंद न कयो। मुस्तफा कमाल खां पोए खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐं अली कुर्शीदी पारां बि नए सूबे जो मुतालबो। हैदराबाद में रैली के खिताब कंदे MQM जे कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो त नए सूबे जे मुतालबे तां हथ न खणंदासीं। सिंध जे 21 ज़िलनि में मुहाजर रहनि था, असां बाए चांस न पर बाए चॉइस हिते आया आहियूं। हिन काफ़िले वज़ीर आला हाउस जो रुख कयो त फ़ैसिलो थी वेंदो, पर असां मोहबत जो पैगाम खणी आया आहियूं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मुस्तफ़ा कमाल जो चवण हो त सिंध में करप्शन चोट चढ़ियल आहे ऐं कराची समेत सिंध जा समूरा शहर खंड बणियल आहिनि। सिंध जे पैसनि सां दुबईअ में मिल्कियतूं ख़रीद कयूं वियूं आहिनि। सिंध जो आइनी ऐं जाग्राफियाई नक्शो कंहिं अॻवान जी ज़ाती ख़्वाहिश ते तब्दील नथो थी सघे। वफ़ाक में वज़ारतूं वठंदड़ ऐं इस्लामाबाद जो तवाफ़ कंदड़ सिंध सां मुख़लिस नथा थी सघनि। पार्टी जी अंदरूनी धड़ाबंदी ऐं धमकियूं लिकाइण लाइ सूबो कार्ड खेॾियो पियो वञे। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल जे बयाननि ते सख़्तु रद अमल। नासिर शाह चयो त सिंध जे विरहाङे जो राग अलापींदड़नि खे हाणे अवामी सतह ते रुगो सियासी अकेलाइप ऐं मायूसी ई मिलंदी। सिंध जा पैसा दुबई वञण जी दावा कंदड़ पहिरियां बहादुराबाद जी फंड्स ऐं पंहिंजे वफ़ाकी वज़ारतुनि जी ऑडिट त कराइनि। सिंध में रहंदड़ हर शहरी हिन धरतीअ जो वारिस आहे, हिते का बि ज़मीन लावारिस नाहे। कराचीअ में HIV जो गणती जोगो फैलाव। इस्पतालूं ॿारनि में HIV वायरस जी पखेड़ जो सबबु बणिजण लॻियूं। वलीका इस्पताल खां पोइ सोशल सिक्योरिटी इस्पताल लांडी मां बि HIV जा केस ज़ाहिर। 4 महीननि खां 8 वरनि जी उमिरि ताईं जे 15 ॿारनि में HIV जी तस्दीक। जनवरीअ में 4, फेबरवरीअ में 2, मार्च में 1, अप्रैल में 5 ऐं मई में 3 HIV केस रिपोर्ट थिया। मामले खे दॿाइण जी कोशिश कई वई, वधीक केस ज़ाहिर थियण जो ख़दशो। ज़रियनि मूजिबि HIV मुतासिर ॿारनि जो इलाज सोशल सिक्योरिटी इस्पताल लांडीअ में थियो। वलीका इस्पताल में 78 ॿारनि में HIV जा केस ज़ाहिर थिया हुआ। 9 ॿार HIV सबबु फ़ौत थी चुका आहिनि। सिंध में अॼु खां 27 जुलाई ताईं बरसातुनि जी अॻकथी। कुझु ज़िलनि में शहरी बोर जो बि ख़दशो ज़ाहिर। मौसमियात खाते मूजिबि कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, बदीन, सांगर, टंडो, मोहम्मद खान, मटियारी ऐं शहीद बेनज़ीराबाद ज़िलनि में अॼु खां 27 जुलाई ताईं किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जो इम्कानु आहे। इम्कानी बरसातुनि खे नज़र में रखंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह CM हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क क़ाइमु करे छॾी। लाॻापियल इदारनि खे मुतहरक रहण जी हिदायत।

पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़न में चौमासी के बरसातुन तबाही मचाए छी। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, विहाड़ी ए बन शहर में तूफानी बरसात सबब गोडे जेड़ो पानी बेहजी वो। गुजरात के इलाके कणियावाला में भी बरसात दौरान घर की बेहत किरण सबब टे भेण भाव फौत। मुख्तलिफ़ इलाक़न में केतरा ही कलाक गुजरण बावजूद पानी निकाल न थो। मीरपुर खास के मेडिकल कॉलेज में जिनसी बगड़न हथा हिरासा थे बाद मुबैना आपघात कदड़ शागिर्दयानी फहमीदा लिगारी के खून से इंसाफ लाए वारसन जो इस्लामाबाद में एहतजाज। प्रेस क्लब आदो एहतजाज कदे वारसन चो तो फहमीदा लिगारी के यूनिवर्सिटी इंतजामिया कुछ बेन किरदारन ब्लैकमेल कयो हो जै सबब हु आपघात से मजबूर थी। सिंध जा इदारा बगड़न हवाले थियल आहिन। जिम्मेवारन खिलाफ कार्रवाई करे फहमीदा के खून से इंसाफ कयो वञे। शहदादकोट में कारा इल्ज़ाम हेठ जवाबदार हथा भाइटी ए नौजवान कतल। संजर भट्टी थाने के हद में जवाबदार अली बख्श जतोई पंजे भाइटी अफरोज ए इम्तियाज शाह के गोली हणी कतल कर छो। वाके बाद जवाबदार फरार। पन्याकिल में भी औरत पना खातू घोटारे कतल। मकतूला के वेगन पुटन ते कतल जो इल्ज़ाम। लखी गुलाम शाह भरसा शर बिरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान एक जनों कतल। बिन औरतों समेत चार जना जख्मी। गोठ अरबाब शर में घिटी के गाल झेड़े में करमला शर मार वो। औरतों समेत जख्मी थे चैनी गोठानन के अस्पताल मुंतकिल कर वो। थानो बोला खान भरसा अस्पताल वेंदड़न की गाड़ी हादसे जो शिकार। बिन औरतों समेत टे जना फौत टे जख्मी। थानो आरब रोड ते मोड़ काटींदे कार कल्टी थी पई। औरत ताजुल नाजा ए ताजो जावल बारड़ो फौत थी वया। टे जना जख्मी थी पिया। पिंगरो वेझो भी रोड हादसों गोठ अली खान वासी इमरान अहमदानी दमड़ी छो। मुरीद शाह वेझो किरेन जो मोटरसाइकिल के टक्कर औरत समेत टे जना फौत। कौमी शाहरा ते माछी गोठ वट हादसे में बशीरा शफाउल्ला ए मोहम्मद मुजम्मिल फौत थी वया।

0: ऐं हिकु वण सिंध अमर जी नाओ केटीएन न्यूज ऐं कावश जी वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मोट सिंध वासियुनि पारां सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मुहिम जारी केटीएन न्यूज ऐं कावश पारां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: क्या आप
3: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz a product by Biocon International Pakistan
5: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
6: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
5: अब दर्द को कहें अलविदा
6: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ
5: जी हाँ
6: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
6: ये ऑइंटमेंट
5: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
6: दर्द सोजिश
5: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है
6: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
5: गर्दन और कमर की तकलीफ
6: पट्ठों के खिंचाव मोच
5: चोट पुराने जख्मों के दर्द
6: और जल्दी जलन में मुफीद
5: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं
6: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
5: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार
6: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
7: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

मैंने चाय के साथ थोड़ा केक खिला, मैंने फैलने लगा लेटने लगा, अखियां दिखा के थोड़ा उसको डरा, मैंने चोर ने फिर पिस्तौल निकाली, चमकीली पर काली काली, दिल मेरा धड़कता धड़कता दिन धड़कता दिन, दिल मेरा धड़कता धड़कता दिन धड़कता दिन, मेरे जहन में आइडिया आया, मैं चोर को कान में बताया।

0: मेरे पास ऐसे भी बड़ी पिस्तौल है वे।
1: ये सुनी के चोर थोड़ा घबराया, उसके माथे पे पसीना आया, रोने लगा रोने लगा। मैंने बोला चोर भाई रोना नहीं रोना नहीं, मैंने बोला चोर भाई रोना नहीं रोना नहीं। कहाँ से आए हो, कहाँ

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News. Aap sun rahe the GAFM network par KTN News.
4: आप सुन रहे हैं
5: क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है
4: जी
5: तीन खारजन के क्लियरेंस ऑपरेशन दौरान मारे हुए सदर पारा हमलो नाकाम बनाने ते सिक्योरिटी फोर्सेस के भेटा पेश में मोदी सरकार पेपर लीक खिलाफ जेएनजी के तहरीक आडो भारत जो तालीम वर वजीर मुस्तफी नौजवानों जो जंतर मंतर ते जशन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी ते वजीर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा मंजूर करे वती तालीम वर वजीर जी इस्तीफा जो बुधी दिल्ली जे जंतर मंतर पार्क में वेठल जेएनजी खुशी में काक्रोच जनता पार्टी तालीम वर वजीर जी इस्तीफा ए हुकूमत सा गालन बाद احتجاج खत्म करण जो ऐलान करे छियो चीन पारा खिते में जारी सूरत हाल ते गणती जो इजहार अमेरिका ईरान का मसले के हल ला जल्द गाल शुरू करण जो मुतालबो ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची जी चीनी हमनसब वांग यी सा किर्गिस्तान में मुलाकात चीनी परदेही वजीर पारा ईरान की खुदमुख्तियारी की हिमायत वांग यी चयो त इस्लामाबाद मफामती याददाश्त नामो खिते में अमन इस्तेहकाम तरफ वञण जो वाहिद रस्तो आहे बीजिंग पाकिस्तान ए बेन मुल्कन की ट्रैकड़न वारन कोशिशन की हिमायत जारी रखंदो अब्बास अराग़ची चयो त अमेरिका जंगबंदी मुआहदे की भंजकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया तेहरान की गालिन वारी ख्वाहिश बरकरार है छिकताण में वाद नथा चाहूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकारन से मुलाकात ईरान खिलाफ वडन हमलन ते गौर विचार सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते वडे हमले बाबत अजा फैसलो नाहे कयो ईरान गालन लाय संजीदा आहे मायदो करण नथो चाहे तेहरान सा राबता जारी आहन नतीजन जो भी इंतजार आहे सऊदी अरब के इब्राहिम मुआहदे जो मेंबर होण घुर्जे सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे जो हिस्सो न बणजे दो ते एटमी मुआहदो न कंदासी ट्रंप जी चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी भी धमकी

ईरानी फौज जे खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर जे सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी चयो आहे त हू अमरीकी फौज सां इम्कानी ज़मीनी जंग में मुक़ाबले जा मुंतज़िर आहिनि। दुआ आहे त अमरीकी फ़ौज जंग जे मैदान में संदन साम्हूं अचे त जीअं सिधी रीति मुक़ाबिलो करे सघिजे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी बयान में चयो त दुश्मन सां हिकु डिघी ऐं लाॻीतो जंग आहे जेका ख़तमु थियण वारी न आहे। अमरीका ज़मीनी हमिलो कयो त ईरानी फ़ौज हुन जो मुक़ाबिलो करण लाइ हर वक़्तु तयारु आहे। सऊदी अरब ऐं यमन जे हूसी बाग़नि विच में छिकताण तेज़। यमन जे अल हुदैदा गवर्नरेट ते सऊदी जे हमले खां पोइ हूसी बाग़नि पारां सऊदी अरब जे शहर जाज़ान ते मेज़ाइल हमले जी दावा। सऊदी इतिहाद चयो आहे त यमन जे अल हुदैदा गवर्नरेट में बंदरगाह खे न पर हूसी फ़ौजी ठिकाणनि स्ट्रेट जे हंधनि खे निशानो बणायो वियो। गरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी सदारत हेठि बलोचिस्तान में अमन अमान जी सूरतहाल ते कोटिया में अहम इजलास। वॾे वज़ीर सरफराज़ बुख्टी ब्रीफिंग ॾिनी। मोहसिन नकवी चयो त वफ़ाक बलोचिस्तान में अमन अमान जी क़याम लाइ सहकार जारी रखंदो। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ बुख्टी चयो त दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी।

0: लॻे थो त ई छोकिरा थकिजी पिया आहिनि, ई छोकिरा मायूस थी विया आहिनि। असां सिंध जो हिकिड़ो पढ़ियल लिखियल शौर आहियूं, जेका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जी तयारी कई आहे असां। असां थकंदासीं कोन, असां आख़िरी दम ते विढ़ंदासीं।
1: जॾहिं तव्हां पंहिंजे हक़ लाइ बीहंदव न, हक़ तव्हांखे कॾहिं बि घुरंदव हक़ कोन मिलंदो आहे, हक़ लाइ विढ़णो पवंदो आहे। इहा तारीख़ रही आहे जेको आहे, उन्हनि खे रिज़ल्ट कोन था मिलनि। घुरनि छा था, छा था घुरनि? हिकिड़ो त पॉइंट आहे
2: SBSE असांजा मुतालबा CC24 खे नल इनवाइट न कंदी, हिते भर्तियूं न कंदी। तेसि ताईं असां कैंप खे हिते रहंदासीं।
3: हिन इदारे में ट्रांसपेरेंसी शफ़ाफ़ियत थी वञे, करप्शन जो इदारो गड़ा।
4: सिंध में मेरठ जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी आफ़िस अॼु नौजवाननि जे एहतजाजी कैंप ॿिए ॾींहुं बि जारी। नौजवाननि राति बि कैंप ते गुज़ारी। मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि पारां चटाभेटी इम्तिहान 2024 जे नतीजनि खे रद्द करणु ऐं कमीशन में सुधारण ताईं एहतजाज जारी रखण जो ऐलान। मुज़ाहिरीन मूजिबि मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाजी कैंप हिकु हफ़्ते ताईं जारी रहंदी, जंहिं बाद आईंदा जी हिकमत अमलीअ जो ऐलान कयो वेंदो।
5: पाकिस्तान की कौम है कि जहां हम होते हैं वहां पाकिस्तान होते हैं। कराची हैदराबाद चलता है तो पाकिस्तान चलता है, उसकी हर जरूरत हम पूरी करते हैं। अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए हम आपसे भीख और खैरात नहीं मांगेंगे। आपको इसी हक नुमाइंदगी के साथ सिंध के शहरी इलाकों का हक देना। ये पूरा काफिला

0: what room Siddiqui bhai karenge.
1: एमक्यूएम सिंध में धार सूबे वो रिंगट बंद न कयो. मुस्तफा कमाल का खालिद मकबूल सिद्दीकी अली खुर्शीदी पारा भी नए सूबे जो मुतालबो. हैदराबाद में रैली के खिताब कंदे एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो तो नए सूबे के मुतालबे हथ न खड़ंदासीं. सिंध के 21 जिले में मुहाजर रहन था. असा बाय चांस न पर बाय चॉइस से आया आयू. इन काफिले वजीर आला हाउस जो रुख कर तो फैसलो थी वो पर अस मोहब्बत जो पैगाम खड़ी आया आयू. कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मुस्तफा कमाल चयो तो सिंध में करप्शन चोट चढ़ल है. कराची समेत समूरा शहर खंड बनल है.

0: सिंध जो आइनी ऐं जाग्राफियाई नक्शो कंहिं अॻवान जी ज़ाती ख़्वाहिश ते तब्दील नथो थी सघे। वफ़ाक में वज़ारतूं वठंदड़ ऐं इस्लामाबाद जो तवाफ़ कंदड़ सिंध सां मुख़लिस नथा थी सघनि। पार्टी जे अंदरूनी धड़ाबंदी ऐं धमकियूं लिकाइण लाइ सूबो कार्ड खेॾियो पियो वञे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह जो ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी कमाल जे बयाननि ते रदि अमल। नासिर शाह चयो त सिंध जे विरहाङे जो राॻ अलापींदड़नि खे हाणे अवामी सतह ते रुगो सियासी अकेलाए पए मायूसी ई मिलंदी। सिंध जा पैसा दुबई वञण जी दावा कंदड़ पहिरियां बहादुराबाद जी फंड्स ऐं पंहिंजे वफ़ाकी वज़ारतुनि जी ऑडिट कराइनि। सिंध में रहंदड़ हर शहरी हिन धरतीअ जो वारिस आहे। हिते का बि ज़मीन लावारिस न आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।